कर कर रखे तेरे तहारी। सेई तुदनो गावन जो तुद पावन, रथे तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन से मैं चितन आवन, नानक क्या विचारी। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। है पी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पांति कर कर जिनसी, माया जन उपाई। कर कर देखे कीता अपना, ज्यों तिसदी वड्याई। जो तिस पहावै सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई। सो पातशाह शहां पत साहिब, नानक रहन रजाई। आसा महला पहला, सुन वड्डा आखै सब कोय। केवड वड्डा डिठा होए, कीमत पाहे ना कहा जाए। कहने वाले तेरे रहे समाए, वड्डे मेरे साहिबा। गैर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहाओ। सब सुरती में सुरत कमाई, सब कीमत मर कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गोर गुरहाई, कहण ना जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईयां, सिद्धा पुरखां कियां वड्याईयां। तुद बिन सिधी किने ना पाईया, कर मिलै ना ही ठाकर हाईया। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू दे तसै क्या चारा, नानक सच सवार नारा। समहला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख। भूखै खाए चलिया दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए। साचा साहिब साचै नाई रहाओ, साचे नाम की तिल वड्याई। आग थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे। वड्डा न होवै घट न जाए, ना हो मरै ना होवै सोग। देंदा रहे न चुकै भोग, गुण एहो होर नाही कोय। ना को हुआ ना को होय, जे बड़े आप देवड़ तेरी दात। जिन दिन करकै कीती रात, खसम विसार है ते कम जात। नानक नावै बाज सनात, रा गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास। हम कीरे कर्म सतगुर शरणाई, कर दया नाम परगास। मेरे मीत गुरदेव मौको, राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाऊ। हर जन के वड़ भाग वडेरे, जन हर हर शरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै तृप्तास, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हरस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आई, त्रिग जीवे त्रिग जी वास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हरस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। रागू जी महला पंजवा, काहे रे मन चितवै उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मैं जंत्यो पाई। तां कारज के आगै कर तरिया, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाऊ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किसकी धरिया। सिर से जग संभा हे ठाकुर, काहे मन फो करिया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन जगावै, मन में सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तर तरिया। जन नानक बल बल सतबल जाई है, तेरा अंत न पारा वरिया। रागासा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर गमागम पारा। सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा।
सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसार निहारा, हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घड़ घड़ अंतर सर्व निरंतर जी, हरे एको पुरख समाणा, एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चो जबडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अबर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना। जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा, हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त पहे जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जमकी फासी। जिन निरपहो जिन हर निरपहो त्याया जी, तिन का पहो सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तहन से तन जिन हर त्याया जी, जिन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करें हर पूजा जी, तप तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पढ़ै बो सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खड़ कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावै मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख परंपर करता जी, तू जे बड़े वरना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निचल करता सोई। तुदे आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करें सो होई। तुदे आपे सृष्ट सब पाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। अस महला चौथा। तू करता सचियार मेंडा साई, जो तो पावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हों पाई रहाउ, सब तेरी तू सबनी तिहाया। जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुदे आप बिछूड़ा आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाही जी। जन सब तेरा खेल, बिजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना हे सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जन हर सेव्या तन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब हो हुए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेख जाने सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए। अस महला पहला। तित सरवरडै पहिले निवासा, पाणी पावक तनहै किया, पंकज मोह पगनी चालै, हम देखा तह डूबी अलहे। मान एक ना चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाऊ। नाहो जति सति नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। पनवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया सा। महला पंजवा पही प्राप्त, मानुख दे होरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। और काज तेरे कितै ना काम, मिल साध संगत भज के बलनाम। सरंग जाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया। कह रहाउ जप तप संजम, धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संजम, धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कव्यो वाच बेनती चौपाई पातशाही दसवीं, हमरी करूँ हा दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सवै तुम कहबो। आप दै मुहे बच्चा, वो सुखी बसह मोरो परवारा। सेवक सिख सवै करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करिया। सब ऐरन को आसंघरिया, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवरना त्याऊं। जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया। चुन चुन सतर हमारे मारिया है, आप हाथ दै मुझे भरिया। मरण काल का त्रास निवरिया, हु जो सदा हमारे पछा। श्री अस्तो जो करे हो रच्छा।
ਰੱਖ ਲਿਓ ਮੈਂ ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮੋ ਪੁਰੀ ਚਤਰ ਦਸਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋਥੀਓ ਜਵਨ ਕਾਲੂ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋਥੀਓ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਈ ਹਮਾਰਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਯੋ ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਜਚਨ ਉਪਜਾਯੋ ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੋ ਹਮਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਗਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵਗੁਣ ਸੁਖ ਦਿਓ ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋਹ ਬਦ ਕੀਓ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਪਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰਿਆ ਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿ ਕਰ ਫੂਲਾ ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀਏ ਕੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ ਖਟ ਖਟ ਕੇ ਪੜ ਪੜ ਕੀ ਜਾਣੈ ਜਬਦ ਕਰ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਤਰ ਤਵ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰ ਤੁਹੋ ਕਬਹੂੰ ਤੁਹ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਤਰ ਸਭ ਹੂੰ ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸਿਰ ਸਭ ਧਾਰੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁਝ ਉਚਾਰੇ ਤੁਮ ਸਭੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਂਤ ਬੇਦ ਭਿਦਰ ਆਲਮ ਨਿਰੰਕਾ ਨਿਰਭਕਾ ਨਿਰਲੰਬ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਸੰਭ ਤਾਂ ਕਾ ਮੂਲ ਉਚਾਰਤ ਫੇਦਾ ਜਾ ਕੋ ਪੇ ਬਨਾ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕਰ ਪਾਨਨ ਮਾਨਤ ਮਹਾ ਮੂਲ ਕਜ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੋ ਕੈ ਸਦਾ ਸਿਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚਿੰਤਨੈ ਪੇਬ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਬਰਨਦ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ ਕਿਹ ਵੇ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ਰੰਗ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਈ ਭੂਪਾ ਅੰਡ ਜੇਰ ਸੇ ਤਜਕੀਨੀ ਤੁਜ ਖਾਨ ਬਹੋਰ ਰਚ ਦੀਨੀ ਕਹੁ ਪੂਰਾ ਜਾਵੈ ਬੈਠਾ ਕਹੁ ਸਿਮਟ ਭਯੋ ਸੰਕਰ ਕੈਠਾ ਸਗਰੀ ਸਿਟ ਦਿਖਾਏ ਚੰਪਵਾ ਜੁਗਾ ਸਰੂ ਸਿਅੰਪਵ ਵਰਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖੋ ਬਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠੁਤ ਪਾਤਾ ਸਗਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋਣ ਕਹਤਾ ਜੇ ਅਸ ਤੁਜ ਤਵ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੇ ਤਿਨਕੇ ਦੁੜ ਦੁਖਤ ਹਵੈ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਨ ਭਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟਣ ਆਏ ਹੈ ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟੈਂਦ ਕਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦਿੜ ਤਨ ਜਾਏ ਨਿਹਾਰ ਹੂੰ ਤਾਂ ਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੋਹ ਹਰ ਹੂੰ ਰਿਸਿਤ ਘਰ ਮੋਹ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁੜਛਾ ਛਵੈ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਨੂੰ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਸਤੇ ਤਾਹਿ ਉਬਾਰਾ ਜਿਨਰ ਨਾਮ ਤਿਆਰੋ ਕਾਂਦਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਗ ਤੇਰਾ ਹਮ ਖੜਗ ਕੇ ਤੁਮੈ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਦ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਗ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ ਸਵਈਆ ਆਹੀ ਗਾਹੀ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਹਿਮ ਤੇ ਕਨ ਮਾਨਿਓ ਸਿਮਰਤ

भीष्मार यथा गणते अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। जिता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक,

तेरा। कहु नानक साब तेरी वड्याई कोई नाउ न जाने मेरा। बोलो जी वाहिगुरु, वाहिगुरु एको ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार, श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक नी तिहाई। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोविंदनो सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दया बैतहाय। सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके। बोलो जी वाहे। पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता, तिन्हां प्यारियां सियारियां दी कमाई दा ध्यान करके। खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसी दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारन चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी के स्वासा ना निभाही, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके। खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके। बोलो जी वाहेगुरु। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जां जां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रिहाय, देग तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जी। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले। बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नूं सिखी दान, केस दान, रह दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी दे शनान, चौंकियां झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पदा रखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा साही दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया, खुली दर्शन दीदार सेवा संभालदा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण, निताणियां दे तां, नेउटियां दी ओट, धन धन साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पातशाह जीओ आप जी दी बख्शे कृपा दयालता सदका संध्या समय दे रात्रि दे दीवान। गदरी बाबियां दे इतिहासक स्थान गुरद्वारा साहिब सरोकन विखे सजाए गए सजे दीवाना विच पातशाह जीओ सोदर रह रास सिंह दे पावन बाणी दे पाठ नितनेम उपरंत आरती शब्द कीर्तन गुर शब्द कथा विचार छे पौड़ी आनंद साहिब जी दे पाठ पावन बाणी दा पाठ कथा कीर्तन करदे आं। बेअंत भुला गो वास्ते सोझी सुमत प्रदान करनी, दराइयां संगतां दीआं सेवावां पिटावां हाजरियां प्रवान करनियां, गुरमत अनुसार समुचियां संगतां दे कारज रास करने दरों घरों गुरसिक्खी सेवा सिमरन नाम दी दात बख्शे करनी। समूह संगतां वल्लों पावन दरबार विच तिहावल कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजर है, दर प्रवान होवे प्रवान प्रसाद संगत विच वरते जो छके। आप जी दा नाम जपे पातशाह जी कृपा करो, दर आई संगत नूं इलाही श्रीमुख वाक बख्श के सुना के निहाल निहाल करो जी। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पही अकाल की, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो।

दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु जी सुही महला पंजवा जाकै दर्श पाप कोट उतारे

जाके टहलू जमदूत बिदारे, जाके धीर को इस मने सधारे, जाके सिमरना मुख उजलारे।